सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू चोरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: ट्रक सेल वालियां कोल जा, 12 महीने काम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
1: कवाल्टी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई कवाल्टी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
0: 416-717-2929
1: 416-717-2929 कवाल्टी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।
2: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
3: लै आपां हुणे करदे आं संधू साहब नाल गल ते करदे आं मसले दा हल।
2: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6640
4: ओए ट्रक काला लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करा
5: मैं? सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
7: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रक ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो,
5: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
7: 905-459-5533
5: 905-459-5533 ते
7: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
8: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੀਟਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
9: ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਾਈਵ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
8: ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਓ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ।
9: ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 4025 ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗੇਟ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 647-338-9172 ਕਾਲ ਕਰੋ ਗੁਰਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 6473389172।
10: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल, 2 लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Court, Bolton, 9059519394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
11: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-535-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 416-917-7763-416-917-7763 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੈਵ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ।
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: saveonenergy.ca/eap।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

सतगुरु होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकाब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। अकाल पुरख दिते हुए सारे रंगों नूं मानदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़दी कला वाली सवेर दे विच खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके।

0: ਸੋ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਸੌਂਗਸ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਲਖਨ, ਆਪਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੇ, ਆਜ ਕਲ ਯਾਦ ਕੁਛ ਆਪ ਆਨੇ ਲਗੇ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮਰਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੌਂਗਸ ਦੀ। ਸੋ ਅਨੂ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਰਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਮਰਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗੀਤ, ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ, ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਜੁੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ?
1: ਬਸ ਵਧੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ 3 ਪੀਸ ਦਾ ਕਿਚਨ ਸੈੱਟ ਦਾ ਬੰਡਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਇੰਚ ਵਾਈਡ ਦਾ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਟੋਪ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਏਅਰ ਫਰਾਈ ਓਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਇਨ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹੈ, $5,500 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 3 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ $2,799 ਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਰੀਡੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਇੰਚ ਦਾ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਪ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫਰਿੱਜ, 36 ਇੰਚ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਕੁੱਕਟੋਪ, 30 ਇੰਚ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਵਾਲ ਓਵਨ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬਿਲਟ ਇਨ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, $13,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਦਾ ਬੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ $6,999 ਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਇਰ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। $2,200 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ $1,499 ਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ 75 ਇੰਚ ਦਾ LED ਸਮਾਰਟ ਕਿਊ LED ਟੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $1,600 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ $999 ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕਲਾਰਕ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲ ਇਜ਼
0: 9054954. ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 905-450-0054 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਪੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਾਂਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਆਪਾਂ 80-90s ਦੇ ਗੀਤ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸਰਾਂਸ਼ ਨਾਲ, ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 437-264-3175 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਾਂਸ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਸਨਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ?
1: ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਕੇ ਥਰੂ ਆ ਗਏ ਹੋਗੇ 10 ਦੇ ਉੱਪਰ। लिसनर्स जो कि एनरोल हो चुके हैं छोटे से टाइम में, हमें महीने ही हुए आपके साथ अभी,
0: जी
1: और बाकी कहते हैं इसमें लोग समझ रहे हैं, लोगों को पता है, पब्लिक है, सब जानती है, थोड़ा सा टाइम ही रह गया है, सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, उसके बाद ग्रांट गवर्नमेंट बंद कर रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आज है तो कल भी है, क्योंकि तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड है ये चीज। आज गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, ऐसा नहीं कि मेरा कोई कोई स्टोर है किसी चीज का, आज मैं सेल दे रहा हूँ कैलेंडर डे पे, तो फिर मैं बोलूंगा अब नहीं मिलेगी ये सेल, और हफ्ते में फिर से वही सेल दे रहा हूँ, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। जब हम गैस स्टेशन पे 5 सेंट पर लीटर बचाने के लिए 1 घंटा खराब कर सकते हैं, दूर तक लाइन में खड़े हो सकते हैं सेविंग करने के लिए 5 सेंट पर लीटर, तो क्या हम लाइक ऑफिस आके हमारे या फिर कॉल करके इतना लाइक 30 से 100,000 डॉलर की फंडिंग नहीं ले सकते? मतलब पैसा बचाने की सोच ली, कुछ कमाने की भी सोचे ना आप, तो 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें, जिसका मेजर पोर्शन आज ग्रांट है, लोन नहीं है। लोन तो पहले हमें पता दूर बहुत है, तो मतलब ग्रांट है, ग्रांट उसे कहते हैं जो पैसा में वापस नहीं करना, कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी फ्री फंडिंग होती है, आपके खाते में आती है। फंडिंग का वर्ड सुन के हमें लगता है भाई साहब क्वेश्चन मार्क बनता है कि यहाँ कुछ कैच होगा वहां कुछ कैच होगा। हम सिर्फ एजुकेशन फंडिंग में डील करते हैं, हम कोई और फंडिंग में डील ही नहीं करते, क्योंकि उन फंडिंग में ठोक के कह रहा हूँ कमीशन होती है, पेपर सेट होते हैं ज्यादातर केसेस में,
0: ठीक है।
1: तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ना पेपर सेट है, ना कोई पेपर में एडिटिंग होती है, गवर्नमेंट पेपर आपके पहले से ही है। बैंक को तो आपको, बैंक तो है नहीं आप इन्वॉल्व, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कागज आपके पहले से ही है, इसलिए आप पीछे ना रहे हैं। आपकी जो भी उम्र है, आपसे 75 के हैं और टेंशन पे हैं, आपसे 30 ईयर्स के हैं, आप स्किल डेवलप करें, आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, घर के कंफर्ट से लॉग इन करें, और लाइक आप मैनेजमेंट सीखें, अकाउंटिंग सीखें, और फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। अगर आप सिंगल हैं आपको फायदा नहीं है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है 2024 के नोटिस असेसमेंट पे 70,000 डॉलर से, आपको फायदा नहीं नहीं नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस असेसमेंट पे, आपको अच्छा फायदा है। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड विद किड्स हैं, ये रिटायर्ड कपल है, यंग कपल है, अच्छा बेनिफिट है। लाइक आप मांग के चले जो लाइक फैमिली ऑफ फाइव को 100,000 डॉलर की फंडिंग जाती है, फैमिली ऑफ फाइव को, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, साल से कोर्स करते हैं,
0: ठीक है,
1: आपके खाते में आते हैं, हमारे खाते में तो आते नहीं है, और ज्यादातर पोर्शन 50,000 तो ग्रांट ही ना उसमें से।
0: अच्छा सारांश, जैसे अब लोन तो पहले ही बहुत होता है कईयों के पे, है ना, सो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ ग्रांट ही ले ली जाए, ऐसे है कुछ?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप मान के चले हमारे 20% क्लाइंट ग्रांट से खुश जाते हैं, देयर हैप्पी विद ग्रांट, हमें लोन चाहिए ही नहीं।
0: अच्छा,
1: बट लाइक ज्यादातर जब लोग ऑफिस आते हैं लोन भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर फैमिली ऑफ थ्री है, उनको 60,000 डॉलर की फंडिंग मिल जाती है, उसमें से 30,000 तो ग्रांट हो गया, जो 30,000 लोन हुआ उसका क्या सीन है कि आपने वो 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है। नंबर वन, कैसा लोन है, जो ऐसा कौन सा लोन है जो 1.5 साल बाद लौटाएंगे? ओके, लौटाना स्टार्ट करेंगे, 10 साल की किस्तें बन जाती है, 10 साल कम है, 14.5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं हम उसको, और 14.5 साल तक, और शुरू में ब्याज क्या है 0%।
0: अच्छा, 1.5 साल बाद ब्याज क्या है 2%। लोन डेफर भी हो जाएगा अगर हम नहीं पे कर सक रहे, कोई जैसे जॉब नहीं लगी, पैसे नहीं है हमारे पास, तो वो डेफर हो जाएगा, इनकी आगे चला
1: डेफर
0: जाएगा,
1: भी हो जाता
0: हम कर
1: है,
0: सकते हैं। अच्छा ठीक है,
1: बिल्कुल जी, ये चीज है। और इसमें मतलब ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं कि आपने जॉब ही करनी है उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन है इस फील्ड में करने, कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जितने डाउट है आप उसमें कॉल करें, ऑफिस आए, जितने केस देखने देखें, जो लोग कर रहे हैं वो मैं फोन करते हैं सर सेकंड में एनरोल करा दो, जो लोग नहीं करते वो कोशिश नहीं पूछ रहे जाते हैं। मतलब टाइम कमी रह गया है आपको, उसके बाद फायदा नहीं है, आज ही फायदा है। कोई भी आपकी एज लिमिट इसमें मैटर नहीं करती, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, आपको अच्छा बेनिफिट है। 2 से 3 घंटे क्लासेस लगानी है, फोन पे सर और क्या करना है आपने, तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
0: जो फीस है आपकी वो आप पहले लेते हो कि बाद में लेते हो?
1: हम बाद में लेते हैं फीस अपनी, जैसे कल भी अराउंड 6 बंदों का अप्रूवल आया जिनके खाते में फंडिंग गिरी है,
0: ठीक है,
1: उन्होंने ज्वाइन करा था मई बैच में, हमें मई वाले बैच में, तो उनका लाइक जुलाई आ गया, तो मतलब उनका फंडिंग गिरी उनके खाते में, तो उसका टाइम लग ही जाता है 30 से 60 दिन तक। तो अब 6 मई से हम हमारे ऑफिस से फोन गए, अब हमें हमारी फीस दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, 199 या 499 डॉलर डिपेंडिंग ऑन कोर्स, नॉट कमीशन, नॉट फंडिंग, नॉट नथिंग। मेरे को लेने
0: जाने
1: की फंडिंग से
0: आप बता रहे हो,
1: मेरे को कोई लालच नहीं है।
0: फीस है, कोई हिडन फीस तो नहीं है? कई बार बाद में कहते हैं अब ये भी है जी, ऐसे तो नहीं है कुछ?
1: देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग आते हमारे पास कहते हैं ऐसा किसी और एजेंट पे गए थे, उसने 3500 शुरू में मांगा। कुछ ऐसे भी कहते हैं आगे कि पहले एनरोल कर लिया उसके बाद पैसे मांग लिए $1,000 $2,000। मतलब हैरान हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कितने चलाकी करते हैं। हमें जुटे चलाकी हमें आती नहीं, हमें करनी है। हम थाकर रजिस्ट्री से काम करते हैं, पहले क्लाइंट आता है, फिर अपने माता पिता को लेके आता है, फिर अपने पड़ोसी को लेके आता है, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब काम है ना, हम रजिस्ट्री से काम करेंगे, आगे बढ़ जाते धीरे धीरे। 199 या 499 फीस है हमारी, ऐसे काम होने के बाद देनी है। नंबर नोट करें, कॉल करें, ऑफिस आए, टाइम कम रह गया है। गवर्नमेंट जब इतना पैसा बाहर फॉरन एड इसी चीज पर लगा देती है तो गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्ट कर रही है, मिस ना करें, कॉल करें। 437-264-3175 437-264-3175 फिर से कॉल करें जी, फिर से नोट करें नंबर 437-264-3175 437-264-3175 कॉल करें, एस्टिमेट ले, ऑफिस आए 437-264-3175
0: जी। थैंक यू सनाज। तो नंबर मैं एक बार फिर दे दिनी हाँ 437-264-3175 ते तुसी गलबात सराशना कर सकते हो, ते ग्रांट का फायदा चुको, एजुकेशन लो, वधिया रहोगे जी।

0: हाँ जी सर, की हाल चाल
1: जी? सत श्री अकाल, कैसी हैं आप
0: जी? सर बहुत अच्छे हैं, थोड़ा शॉर्ट रखिए प्लीज। हाँ जी
1: बिल्कुल, शॉर्ट ये कि कल का मैच बड़ा जबरदस्त था, पोर्चुगीज और क्रोशिया का, और ऐसे मैचेस बहुत कम देखने मिलते हैं फेस टू फेस विद मैनेटिंग टाइगर। अब जो होगा तो फिर कनाडा और मोरक्को का होगा मुकाबला
0: जी, कल है मुझे लगा।
1: बड़ा सख्त है
0: कल है
1: जी जी जी जी कल है, उसके ऊपर सबकी नजर है, बाकी ये छोटे मोटे तो चलते रहेंगे, बहुत कम लोग हैं इन चीजों को समझने वाले। बहरहाल शॉर्ट बिल्कुल, टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा अपना वक्त दिया, कीमती नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना। नुमाया बोलते मोर क्लियरिटी से, यानी आसानी से नजर आना। नुमाया हो के दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से चर्चा है तेरे बारीक बीनों में। शुक्रिया बहुत बहुत
0: जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते बिल्कुल जी, ते बड़ी वधिया गलबात करके जांदे आ। ते लो जी आपां हुण लैंदे आ राणा भाजी नूं, ते राणा भाजी साडे नाल जुड़ चुके आ, ते इहनां दी कॉल लैंदे आ। हांजी भाजी, की हाल चाल जी?
2: थैंक यू सो मच पंजी, तुहानू ते अपने सारे लिसनर्स नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। सो अज तां आपां डीएसपी दी हमेशा गल करदे, रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान, जिहदे अंडर की है फेडरल गवर्नमेंट वालों $90,000 तक की ग्रांट दी जा रही है, जो भी लोग जिन्हों की एज 49 साल तो घट है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल ने, तो उन्हों को दो चीजा होनी चाहिए, एक तो डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट, एंड सैकेंडली वैलिड जो सोशल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, क्योंकि पहला सिर्फ जी ग्रांट सी प्रोवाइड की जाती थी जो लोग इतने पीआर या सिटीजन है, पर बाद चो गवर्नमेंट ने जो है चेंजेस की, जो लोग इतने पक्के नहीं भी है, अगर तुम्हारे को सोशल इंश्योरेंस नंबर वैलिड है, डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट हैगा, तो आप सारिया जो ग्रांट्स ने ले सकते। कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000, 416-910-9000, ते वैबसाइट है पंजाब इंश्योरेंस .ca। ते नाल ही पेंडी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कीतिया ने, जिन्हों बच्चों की एज 18 साल तो घट है एंड पेरेंट्स के कोलों का डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट हैगा, तो $3,480 जो है गवर्नमेंट वालों एक सैपरेट जो है बच्चों जो दिता जा रहा है, पहला यह अमाउंट काफ़ी घट हों, सो कह लिया जाए $290 जो हर महीने जिन्हें भी स्पैशल नीड वाले बच्चे ने उन्होंने पेरेंट्स को मिल सकता है, डिपेंड करता है अगर उन्होंने इनकम $82,000 तो घट होनी चाहिए है, जिन्हों की उम्र 18 साल तो अबव है, सो उन्होंने पहला $200 हर महीने आता सी, साल का $2,400, हुण गवर्नमेंट ने जो है $2,450 करते जुलाई महीने तो, हुण $205 के करीब जो हर महीने उन्होंने आया करेगा। सो तुम कॉल करने सारे बेनीफिट्स लिए कि बेनीफिट्स वर्क करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिहड़े लोग डिसेबल हैगे ने फिजिकली या मेंटली, उन्होंने फ्यूचर लिए पैसा देना चाहती है। सो तुसी कॉल करना पंजाब इंश्योरेंस से 416-910-9000, 416-910-9000, वैबसाइट है पंजाब इंश्योरेंस .ca, एंड जिन्हों के कोई डिसेबिलिटी टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट नहीं है, सो कि आप अपलाई करना है, तुम मैं कॉल करना है एंड आप हरेक स्टैप से गाइड करा, ताकि मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट तो बेनीफिट ले सको। नंबर टू रीच पंजाब इंश्योरेंस 416-910-9000, 416-910-9000, ते वैबसाइट है पंजाब इंश्योरेंस .ca। थैंक यू सो मच भैन जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू थोड़ा। ते लो जी एक नंबर होर ले लो तुसी, एह हैगा एक बार फिर स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज का नंबर थानू दे दिए, वधिया तुसी अपने गड्डियां दी डेंटिंग पेंटिंग ठीक करवानी है ना, 4 लोकेशन तो सर्व करते हैं, बड़ी वधिया सर्विस थानू प्रोवाइड करते हैं जी। 905-874-9978 ते गलबात हो सकती है, 9058749878 ते गलबात करनी है, ते इहदे नाल नाल तुसी एक बार फिर ग्रोसरी का नंबर ले लो, वधिया ग्रोसरी करनी है 2898010566 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ?
3: ਭੈਣ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ SGPC ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ

0: Brampton या फिर तीजे लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton Vidya Grocery सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900
1: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 4165246704 4165246704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover
0: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियां इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054 58 68

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: हेलो
4: हेलो, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: हाँ जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
4: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
3: ओ इंडिया की, तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
4: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया, मिल जानगियां?
3: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदो दिया चाहिदियां ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
4: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
5: 32-55-80 98
4: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
5: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
6: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828 905-450-2828
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton,

0: रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हूँ।
1: तब फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम सेडोव कुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
0: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
1: इना कॉल नहीं ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
0: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
1: आज ही कॉल करो नीलम सेडोव नो
0: 647-739-8710।
2: शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है।
3: हर प्रकार के शीशे अते विंडो आदि लई रीति ग्लास एंड विंडो, टेबल टॉप्स, फर्नीचर ग्लास, बार आदि लई कस्टम डिजाइनिंग भी अवेलेबल है। रीति ग्लास हुण वाशरूम दे शावर नूं शीशे दी दीवार अते डोर्स नाल बहुत ही खूबसूरत बना दिंदे हन। तुसी इन्हां दा शोरूम जरूर चेक करो। रीति ग्लास एंड विंडो 9057908335-790-8335 और विजिट www.reetiglass.com।
4: हर महीने मैकेनिक नूं पैसे दे दिंदे हो, ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नूं गोद लै लिया है।
5: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
4: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
6: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
4: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
6: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसीसागा। कॉल 647-581-9999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
7: लोग मेरे बारे की कहंदे ने, मैनू इसका कोई फर्क नहीं पैंदा। आई एम देव टाकला एंड यू आर नॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम CHLO AM 530, द नंबर वन रेडियो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets de pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services de pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna waji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the Interest

0: एक्शनेबल। खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
1: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
2: ਅੱਜ
3: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
4: चल क्या रहा है यहां पर?
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
3: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?

0: नंबर 905-564-6444-905-544-944 स्टूडियो का नंबर है। तो जिमें कि तुहानू मैं पहला भी दस्या कि अपने शहर दे विच बड़े कमाल दे शोज हो रहे ने। सब तो पहला मैं तुहानू दस दिया कि कल नूं 4 जुलाई नूं किचनर दे विच स्टैंड अप कॉमेडियन प्रीतिश नरूला जी का शो हो रहा है, जिहड़े कि तुहाडे लई लोकेटर ने पब्लिक लाइब्रेरी थिएटर, इत्थे तुहाडे लई शो हो रहा है किचनर दे विच कल नूं 4 जुलाई नूं। ब्रैम्पटन दे विच अपने शहर दे विच 5 जुलाई नूं शो होएगा लैस्टर बी पीयरसन मेमोरियल थिएटर। एड्रेस हैगा इहदा 150 सेंट्रल पार्क ब्रैम्पटन। इत्थे तुसीं पहुंचना आ ते अपनी टिकट्स दे जे तुसीं हजे भी नहीं लईआं। प्रीतिश नरूला जी काफ़ी वधिया एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने जिन्हां दे शोज काफ़ी वधिया वधिया कह लो कि हो रहे नेगे। तो ये अपने कैनेडा टूर ते आए हुए ने। इन्हां दा ब्रैम्पटन दे विच अपने 5 जुलाई नूं शो हो रहा लैस्टर बी पीयरसन मेमोरियल थिएटर दे विच। ते इहदे लई टिकट्स तुसीं अपने बुक करवाओ 6476312161 दे उपर कॉल करके, 647-631-2161 दे उपर कॉल कर सकदे हो, या फिर एक नंबर होर है 6472093101 647-209-3101 दे उपर कॉल कर सकते हो 6472093101 इस नंबर ते भी कॉल कर सकते हो। प्रीतिश नरूला जी का शो हो रहा है ब्रैम्पटन दे विच 5 जुलाई नूं। कल नूं होएगा किचनर दे विच 4 जुलाई नूं, ते उस तो बाद कैलगरी होएगा 12 जुलाई, वैनकूवर दे विच हैगा 18 जुलाई नूं, ते फिर उस तो बाद लास्ट शो होएगा मॉन्ट्रियल दे विच 15 अगस्त नूं। ते जेकर तुसीं प्रीतिश नरूला जी दे फैन हो, उहनां दे कॉमेडी शोज़ तुसीं देखदे हो, तां फिर जरूर तुसीं पहुँचो। ते ब्रैम्पटन दे विच 5 जुलाई नूं शो हो रहा बड़ा कमाल दा, ते इह तुसीं देखण दे लई पहुंच सकते हो। स्टूडियो नंबर 905-564-6444 दे उपर अपनी कॉल्स कर सकते हो। तो जिमें कि तुहानू मैं एक चीज़ होर दसी पहला भी कि जिहड़े शोज़ हो रहे ने वो बड़े कमाल कमाल दे शोज़ ने। वैसे तो तुसीं देखिया ही होएगा कल बहुत कमाल दा फीफा वर्ल्ड कप जिहड़ा अपने चल रहा, कल बहुत कमाल दा मैच सीगा। तो पुर्तगाल दी जिहड़ी टीम सी उह तुहानू पता ही है कि बहुत तगड़े फैनस ने, है ना। तो फिर रोनाल्डो दे फैन जिते किते होण, फिर कह लो कि सपोर्टर्स पहुँच ही जाते हैं। तो बड़ा कमाल दा शो कल दा रहा। यूनिटी टूर लैके आ रहे ने सरगुन मेहता एंड एमी विर्क, सैलूलर पॉइंट ते ट्रू साउंड लाइव वालों प्रेजेंट किया जा रहा है। ते इस शो होएगा 14 अगस्त नूं टोरंटो दे विच स्कॉशिया बैंक एरीना दे विच शो हो रहा बड़ा कमाल दा। यूनिटी टूर लैके आ रहे ने एमी विर्क, बड़े कमाल दे सिंगर ने, सरगुन मेहता बहुत कमाल दे आर्टिस्ट ने। ते इन्हां दे शो देखण दे लई तुसीं पहुंचना, लाइव इन कॉन्सर्ट शो होएगा 14 अगस्त नूं टोरंटो दे विच। टिकट्स बिल्कुल लाइव ने, तुसीं अपनी टिकट्स बाय कर सकते हो ticketmaster.ca दे उपर पहुंचो, ते अपना मैप देख के सीट्स जिहड़ी तुहानूं सूटेबल लगदियां ने ओह तुसीं अपनी बुक करवा सकते हो। ticketmaster.ca दे उपर तुसीं जाके टिकट्स बुक करवाओ यूनिटी टूर दे लई। एमी विर्क एंड सरगुन मेहता पहुंच रहे ने 14 अगस्त नूं अपने शहर टोरंटो स्कॉशिया बैंक एरीना दे विच। बहुत ही कमाल दा शो होएगा, म्यूजिकल इवेंट कोई भी होवे तुहाडा कह लो कि स्ट्रैस नूं दूर पहुँचा दिंदा, तो इस करके इस शो दे उपर भी जरूर पहुँचो। ticketmaster.ca दे उपर जाके तुसीं टिकट्स बाय कर सकते हो। तो इस तो पहले कि अगला गाना आपां सुनीए, तो आपां चलदे एक बार फिर तो फटाफट लिंक लगाइए नैक्सट, तुहानूं डील दवाइए ग्रैंड होम फर्नीचर तो, जिते कि अब सा लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम चल रहा है। बड़े कमाल दिया तो असं अच्छ प्राइसिस मॉडर्न फर्नीचर दवा रहे हैं, तुम अपने घर का पूरा फर्नीचर इन्होंने को लैके आ सकते हो अंडर वन रूफ। तो नाल दी नाल फ्री गिफ्ट दवा रहे हैं तुम्हें ग्रैंड होम फर्नीचर तो। जी सिद्धू सर
1: मेहरबानी, और असीं पहुंचे हुए हैं मंदिर 294 वॉकर ड्राइव गेटवे ते कोइन दे नेड़े टॉलबम ते एयरपोर्ट दे विचकार बॉल बार दे पिछले पासे ग्रैंड फर्नीचर ते पहुंचो। ते अज रात दे 8 बजे तक खुले ने है और लाइव होवांगे असीं शाम दे 6 बजे तक। सुख वाली मेरे नाल ने ते उहनां नूं नाल जोड़दे हां। सुख आपां हुण कि लई आपां डील दे रहे हां?
2: बिल्कुल सुख साहब, कैनेडे वालियां डीलां जिहड़ियां इस वीकेंड तक परिवारां नूं मिलणियां। परिवारां ने जे हाइड्रोलिक बेडरूम सेट लेने साहब, बहुत सारी नवी इन्वेंटरी लग चुकी है। कनेडियन मेड कस्टमाइज सोफा सेट लेने, चाहे तुम रियल मार्बल के डाइनिंग टेबल लेने, ऑडी के बेस के नाल लेना या डोर के बेस के नाल लेना, बहुत सारी नवी कलेक्शन जी लग चुकी है। रिकलाइनर जे मसाजर चाहिए ने, एक नवा रिकलाइनर सिद्ध साहब आया, तुम चाह का कप गर्म करना या कोई ड्रिंक को ठंडा करना, जो बहुत सारी इन्वेंटरी जी नवी लग चुकी है। 294 वॉकर ड्राइव के उपर प्राइजा तो ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਦਈਏ।
2: ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ।
1: ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ?
2: ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਈਟ ਵਿਨ ਸਟੋਰ ਆ ਜਾਓ, 1499 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ।
1: ਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਪਈ।
2: ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਕਾ ਜੜਤਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ, 905-302-9494। ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਈਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ
1: ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਡਾਠਾ ਡੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੀਲਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਲਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ
0: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 905-302-9494 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਟੂਰ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਇਨ ਕੌਂਸਰਟ ਹੋਏਗਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਅਰੀਨਾ। ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ .ca ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ ਫਟਾਫਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਟਰੂਸ ਆਉਂਡ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਟੂਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਐਂਡ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड हजार लोग आते ने ते हजारा ही जाते ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर ही टिके रहते ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तां फिर आज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381 416-453-3381।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स ले बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे ले पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हाँ, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।
2: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नूं या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7।

0: चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
1: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो, जेड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
3: सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको एक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है इन्हां दी तंदूरी ग्रिल बाहरले पासे, जिथों तुहानू बणिया बणिया हर फूड मिलदा है। नाल दी नाल रॉ मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो। अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ, 45 डस्क ड्राइव, फ्लिपन फेंडर वे, ब्रैम्पटन, 9985 मकवीन ड्राइव, ब्रैम्पटन, 1465 मेफील्ड रोड, ब्रैम्पटन, 33 फार्ली ड्राइव, गोवा और 600 हैस्पलर रोड, कैम्ब्रिज, नमी खुली ब्रांच, 25 सेंट्रलवुड पार्कवे, कैनेडी के सेंट्रलवुड पार्कवे के नेड़े आओ। हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से।
0: करो कदो तो किस किराए दे छोटे जे घर च रवांगे।
4: ओए बस, मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु कॉल करन तक।
5: तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इक्विटी टेक आउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
6: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो, तां मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु जरूर मिलो। नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बां तां मॉर्गेज तो नहीं हो सकदी ना।
5: या कॉल करो 647-294-5503, 647-294-5503।
6: भरोसे अते विश्वास वाला नाम नरदेव सिद्धू, लाइसेंस नंबर 10530, nardevsiddhu.com।
7: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
8: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-4161.

0: थर्पेंती या टेक्स्ट मैसेज करो 416-450-6680 416-450-6680 या ईमेल करो sales@paradisedevelopments.com। वधेरे जानकारी लिए विजिट करो paradisedevelopments.com।
1: मैं थोड़ा अपना वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा

0: your tickets now at heritagesounds.ca. Presented by TD Bank in association with Turkish Airlines, Heritage Canada, Experience Ontario, Experience Brampton, and the Toronto Star.
1: क्या बात है? So okay, गाना मैं होने वीर होने दी request लोने मैं कर दिया सिर्फ पिछा नहीं छड़ दी दारू नहीं होने पिछा नहीं छड़ दी पर भाई होने ने प्यार नल गाने दी request की थी या ते सुन लेने हैं वीर दविंदर